परमात्मा अकाल पुरख की उस तत्व वड़ियाई दसी। भगत कबीर जी कहते ने हे भाई आ उस सतगुरु की पूजा कर, उसकी आरती इंज गायन कर जिमें के ओ परमात्मा अकाल पुरख वड्डा है ते उसनू याद भी वड्याइयां दे नाल कर। हुण सतगुर की पूजा की है, सतगुर की आरती की है। प्रोफेसर साहब सिंह जी ने इन्हां शब्दां दे अर्थ बड़े सुंदर कीते ने। लिहो आरती हो पुरख नरिंजन, सतगुर पूजो पाई। भाई गुरु की आरती, सतगुर की आरती, गुरु की पूजा, गुरु के हुक्म मुताबक चलना, गुरु के दसे मार्ग से तुरना, जिमें गुरु चलावे उवें चलना, ते गुरु के बाणे विच गुरु की रजा विच रहना, यह गुरु की आरती है। ते गुरसिख नेता प्रति उस मालिक की आरती विच जुड़िया रहिंदा है। ते कहिंदे ने आरती है, आरती करके परमात्मा की पूजा करके परमात्मा नूं रजा के उहदे कोलों कुछ मंगना, इहनूं कहिंदे ने आरती। परमात्मा कोल कुछ डिमांड करनी, कुछ जाचना करनी, उहदे अगे अरदास करके उहदे कोलों कुछ मंगना है। सो सतगुरु जी ने ख्याल बड़ा सुंदर दित्ता है। कल आपां गगन में थाल अता शबद वजंत पेरी रहाओ, इथों तक आपां विचार सरवण कीती सी। आओ अगले तुकां दी विचार अज आरंभ करिए कि सतगुरु जी ने सानू इस विच उपदेश कैसा दिता है ते भगत कबीर जी की कह रहे ने। इधर भगत कबीर जी ने बाणी विच कुछ आरती दे बचन कहे ने, इधरों धन गुरु नानक पातशाह कह रहे ने आपां दोनां नूं सरवण करना है कि उस मालिक की पूजा उस मालिक की आरती किने कीती जा सकती है। सहस तव नैन नन नैन है तोए, कौ सहस मूरत नन्ना एक तोई। सहस तव नैन नन नैन है तोए, हे परमात्मा तेरे सैकड़े अनेक ही नैन हैं, हजारां दी गिनती विच तेरे नैन हैं। सहस तव नैन, हुण फिर अगे लफज आ गया है सहस तव नैन नन नैन है तोए। हे परमात्मा तू प्रगट भी है ते तू गुप्त भी है। जिवें तेरे हजारा नैन हन ते अकाल पुरख होण दे नाते तेरा कोई भी नैन नहीं है। हजारा तेरिया अखा हन लेकिन तेरी कोई भी अख नहीं है। सहस तव नैन नन नैन है तोय, कौ सहस मूरत नना एक तोय। एक पासे कहिंदे ने तेरिया सहस मूर्तां ने हजारां, पर हे अकाल पुरख जे तेरी वडियाई वल जुड़िया जाए तेरी कोई मूर्त नहीं है, क्योंकि तू मूर्त तो रहता है, तेरा कोई चिन्ह चक्कर नहीं है, तेरा कोई आकार नहीं है। सतगुरु गुरु नानक पातशाह कहिंदे ने

सब में जोत जोत है सोए, क्योंकि तू सर्वव्यापक है। सारे अंदर हे परमात्मा अकाल पुरख केवल तेरी जोत है, सब में जोत जोत है सोए। जिवें तू सर्व व्यापक है, सर्व व्यापी है, हर था रमिया होया है, इस तरह तेरी जोत सारे विच व्यापी हुई है। तिस ते चानन सब में चानन होए, कहने सारे अंदर चानन प्रकाश हे मालिक तेरी जोत रही है। तिस कह चानन सब में चानन होए, तेरी जोत का सारे अंदर प्रकाश है। एक चानन है पर एक गल सतगुरु ने कमाल दी कर दी, गुरसाखी जोत प्रगट होए। ए जिहड़ी जोत है ना, गुरसाखी जोत प्रगट होए, हुंदी गुरु की कृपा नाल है, एवें प्रगट नहीं हुंदी। जब तक असीं गुरु नूं नहीं ना मिलांगे, ए जोत साडे अंदर प्रगट नहीं हो सकती। गुरसाखी जोत प्रगट होए, जो गुरु की कृपा नाल अंदर जोत जग पवे, तो फिर की हुंदा है,

हे निर्गुण स्वरूप, हे दुनिया दे मालिक, हे सृष्टि दे मूल, हे जगत नू बनाने वाले परमात्मा, सिद्ध समाध अंत नहीं पाया। बड़े बड़े सिद्ध जोगी जति जिन्ना ने तेरा ध्यान ला के, तेरा ध्यान तर के बड़ा बड़ा तप किया, बड़ी बड़ी भगती की, सिद्ध समाध समाधियां ला ला के, पर कहते ने अंत नहीं पाया, तेरा अंत ना पा सके, तेरा अंत ना ले सके। फिर की होया, सिद्ध समाध अंत नहीं पाया, लाग रहे सरनाई, कहते ने आकर हार के तेरी शरण विच आ पाए, तेरी शरण विच आ डिगे, तेरे चरणां नाल लग गए कि हे मेरे मालक असी तेरा अंत नहीं पा सकते। सिद्ध समाध अंत नहीं पाया, लाग रहे सरनाई, लेहो आरती हो पुरख नरिंजन, सतगुर पूजो पाई। भाई जी वह अंत नहीं पा सके, उन्होंने आखिर मालिक के चरणों में डिगना पिया, तो तू ही उस लैंड ते ना तुरी, तू ओ आरती करनी है जिहड़ी आरती तेनों गुरु ने समझाई है। केड़ी आरती है? सतगुरु पूजो भाई, आप ही अपने गुरु की पूजा कर, अपने गुरु के चरणों नाल लग। अगे भगत कबीर जी ख्याल देते हुए समझाते ने, कहते ने, ठांडा बदमा निगम विचारे। आरती उसकी करनी है जिसके दरबार विच ब्रह्मा वर्गा खड़ा होके, ब्रह्मा बहुत वड्डा देवता है, पर ब्रह्मा भी उसके दरबार विच खड़ा होके वेद विचार रहा है। ठांडा ब्रह्मा निगम, निगम का भाव है वेद। ठांडा ब्रह्मा निगम विचारे, अलख ना लखया जाए। क्योंकि हे परमात्मा तू अलख है, लखन तो बाहर है, तेरी लीला लखी नहीं जा सकती, तेरे गुण कहे नहीं जा सकते, तू इतना बेअंत है, तेरे गुण बयान नहीं कीते जा सकते। अलख ना लखया जाए, वो अलख है जो लखया नहीं जा सकता। अगे भगत कबीर जी कहते हैं,

জুয়ালে, দোষের মাঙ্গো চুনা, চুনা খেতে নেই আটের দোষ চাই দেয়, পাও ঘিও সঙ্গ লোনা এক পা ঘিও তে নাল লুণ ভি চাইদা, আধ সির মাঙ্গো দালে আধ সির দাল ভি চাইদি হ্যায়, ফির কহিন্দে নে মুখ দোনো বক্ত জুয়ালে, দোনো বক্ত দা কাম হো গিয়া, দোয়ে বক্ত আরাম নাল নিকল জানগে, ফির কহিন্দে নে হে পরমাত্মা খাত মাঙ্গো চোপাই সহারা না আওর তুলাই, হে মেরে মালিক এক খাট, खाट कहते नहीं खाट मंगो चुपाई, चुपाई का भाव है चार पैर वाली मंजी, हुण वो मंजिया इथे ते है नहीं, इथे ते बैड ही मिलते ने, तुसी बैड कह लो गल एक ही है, हुण कहते ने भगत जी हे परमात्मा मैं तेरी भगती करने वाला मैं पुजे नहीं सोना, पर कई जगह सानू भी पुजे सोना पैंदा है क्योंकि इंतजाम नहीं होंदा, पर ख्याल कर लेना ये भगत जी बाणी विच कह रहे हैं, ये डिमांड मेरी नहीं है, भगत जी है, भगत जी कहते हैं हे परमात्मा मैं पुजे नहीं सोना, खाट मंगो चुपाई सराणा और तलाई, एक सराणा के नाल तलाई भी चाहिदी है, कहते ने इत्थे ही बस नहीं, उमर को मांगो खींदा तेरी भगत करे जन थींदा, हे परमात्मा उपर को मांगो खींदा, उपर वास्ते सोहनी रजाई होनी चाहिए, वेख फिर तेरा भगत करे जन थींदा, तेरा भगत तेरी भगती कितनी खुशी नाल करदा है, साध सगत बिल्कुल सही गल है, जो मनुख नूं खाण लई पहनण लई बहन लई सौण लई थां अच्छी मिल जाए ना, वो कहिंदा बस इतों वध होर की चाहिदा है, खाणियां ते दो रोटियां ही ने ना, खाने ते दो फुलके ही ने ना, इतों वध होर की चाहिदा है, सही बात है, जिस गृहस्थी दियां घर दियां मंगां पूरियां हो जाण साध संगत उहनूं होर कुछ नहीं चाहिदा, अंत विच भगत जी ने गल बड़े कमाल दी कह दित्ती, कहिंदे ने हे परमात्मा ये ख्याल करी मैं एक भगत होण दे नाते मंग रहा तेरे कोलों, किते ना कह नहीं कि बड़ा लालची है सब कुछ ही मंगी जाता है, मैं ना ही कीता लभो एक नाओ तेरा मैं फपो, हे परमात्मा ए कोई मैं लोभ लालच नहीं कीती, ए मत समझी कि मैं लालची हो गया, नहीं लालच उसनू कहिंदे ने जिसका ना अगे ना पिछे ना धी ना पुत्र ना कोई साख ना संबंधी कोई भी ना होवे, फिर वह माया पिछे भजा फिरे उन्हें कहो ये लालची है, जिदा भाई घर बार है धियां पुत्र ने बाल बच्चा परिवार है साग संबंधी ने सौ किसी आना जाना मिलना करना लालची नहीं कह सकते, जरूरत कह सकते हो, इसकी जरूरत है, इन्हें जो मंग की है जरूरत वास्ते मंग की है, पर असी अज लफ्ज लालच वरत देते हैं जी बड़े लालची हो गए ने, बिल्कुल नहीं, गृहस्थी दियां लोड़ां इतनी वध चुकियां ने तुसी उन्हू लालची नहीं कह सकते उहदियां लोड़ां इन्नियां ने, आपां अपने वल वेख लिया करिए जे साडियां लोड़ां वध सकदियां ने साडी डिमांड वध सकदी है ते भाई किसे भगत दी नहीं वध सकदी उहदी भी वध सकदी है, इसलिए ख्याल करना मैं ना ही कीता लभो एक नाम तेरा मैं फबो, हे परमात्मा यह मेरा लोभ लालच नहीं है, तू वेख मैं तेरा नाम ही ते अपने हिरदे विच वसाया ना, हुण जिथे नाम वस गया भगत जी कहिंदे ने नाम नूं मुख रख के सब कुछ मंग लो, परमात्मा देण नूं तैयार ने, फिर कहिंदे ने कहत कबीर मन मानिया, मन मानिया तो हर जाने, बस ओ परमात्मा साडे हिरदे विच वस जाए उसकी यही आरती है, उसकी रजा विच आ जाइए, उसके हुक्म विच आ जाइए, जिवें वह रखता है जिवें वह चलांदा है जिहड़ा उन्हें मार्ग रस्ता बनाया है उस ते चल पईए, भगत जी कहिंदे ने साडी आरती है, इसलिए आओ तुझ बुद्धि अनुसार सेवा कीती प्रवान कर लेना कि इसनूं याद कर लेना कि गुरु अगे आरती गुरु की पूजा साडी श्रद्धा साडी पावनी साडी निम्रता ते गुरु का हुक्म मनना है, ते जिन्हें जिन्हें गुरु का हुक्म मन लिया जो तिस पावे सो आरती होए, इसलिए भाई आपा कोशिश करिए कि दुनियावी अडंबर छड़ के सच्चे नाम दे नाल जुड़न की कोशिश करिए, कल कोशिश करांगे इस तो अगला प्रकरण अगे आरंभ करिए, कोई रसना मानी ना रहे सारे मिलके आखो जी।

सैतन गुरु रामदास पातशाह का उच्चारण कीता, जन नानक तूर मंगे तिस गुरसिख की, जो आप जपे अवरै नाम जपावे। जेड़े आप नाम जपदे हन भुलिया नूं गुरु नानक दे चरणां नाल जोड़दे हन, उन्हां दी तूर गुरु रामदास पातशाह लोच रहे हन। ये शब्द भाई साहब भाई बलविंदर सिंह जी रंगीला चंडीगढ़ वाले पासों, जो इंटरनेशनल कीर्तन कौंसल दे प्रधान हन, आ उन्हां पासों ये शब्द आपा प्यार नाल सरवण।

तोड़ मंगे तिस गुरु सिख की, जो आप जपे अवरै नाम जपावे। गुरु नानक भी उसकी चरण तोड़ी मंगते हैं, जेड़ा जपदा है और जपांदा है सतनाम श्री वाहिगुरु। लाहौर दे विच एक वैद है सुजान चंद, नाल इहदा एक मित्र है, कविता गांदा है, कवि है, पर दोनों दुखी। सुजान चंद यह कहिंदा मेरे कोल धन दौलत की कमी नहीं, पर मन दुखी रहिंदा। कवि क्या करदा है, सुजान चंद तेरे कोल सब कुछ है तू फिर भी सुखी नहीं। मैं कवि हां, हिंदुस्तान ते औरंगजेब दा राज है, जिसने राग और कविता बंद कीती है। मेरी कविता दा मुल कोई नहीं पांदा, मैं भुखा मरदा मैं तां दुखी। तेरे कोल खाण नू सब कुछ तू फिर भी दुखी, मेरे कोल खाण नू कुछ नहीं मैं तां दुखी। ए है दोनां दा दुख। एक दिन कवि आया सुजान चंद कहन लगा इस कवि नू, भाई मित्रा की गल है, आज तेरा चेहरा दसदा है तू बड़ा खुश कुछ मिले। कवि कहन लगा हां आज मैनू भी कथा मिल गई है, वो है श्री आनंदपुर साहब जिथे धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज रहिंदे हन, जिहड़े किसे बादशाह कोलों नहीं डरते। एक कवि ते की सुनिया उन्हां 52 कवि रखे हन, वो कविया का बड़ा मान करते हैं। मैं चलिया आनंदपुर साहब, सुजान चंद जे तू भी चलना है तो चल, चंगे दोस्त का काम है चंगा राह दसना। सुजान चंद ते कवि लाहौर तो चले आनंदपुर साहब पहुंचे, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का दरबार सज रहा है, संगतां दी भीड़ लग रही है। कवि दी वारी आई मत्था टेकिया, कहन लगा महाराज ऐडा वड्डा हिंदुस्तान पर मेरी कविता का कोई मुल नहीं पा रहा, सा संगत एक बेनती करदे आ, ये कोई सुनिया सुनाईया गल्ला नहीं, ये साडे हिंदुस्तान का इतिहास है। औरंगजेब दे वेले राग रंग बंद सन, कविता बंद, पूजा पाठ बंद, और ये हिंदुआ नू जबरदस्ती मुसलमान बना रहा सी। इसने राग बंद कीते, तां गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सिखां नू हुक्म कीता राग गाओ। औरंगजेब ने कहा किसे ने कविता नहीं गाणी, ता गुरु साहबा ने 52 कवि रखे, कह दिता अणख नाल जीवना है, ना जुलम करना ते ना ही जुलम सहना। इसे वास्ते आनंदपुर साहब विसाखी वाले दिन अज तू 300 साल पहला धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने खालसे पंथ की साजना की। इस कवि ने बेनती की थी, महाराज मेरी कविता का कोई मुल नहीं पाता। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहन लगे जिदी कोई थां नहीं ओदी गुरु नानक थां है। कवि नु रख लिया। सुजान चंद की वारी आई, इसने भी मत्था टेकिया ते कहन लगा महाराज मेरा मन बड़ा भटकदा, सब कुछ है कोल पर मन में सुख नहीं। साहब जी कहन लगे दौड़ जा, समझ ना आई।
ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੌੜ ਜਾ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਜਿੱਧਰ ਪੈਰ ਲੈ ਤੁਰੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੌੜ ਪਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਪਈ, ਪੈਰ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ, ਸੁਜਾਨ ਚੰਦ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਾ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਸੁਜਾਨ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਆਇਆ ਵਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੈਦ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਮਕੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਵੈਦ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਦ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੇਰਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੋਂ ਮੁਸਕਰਾ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਨੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਇਹ ਭੇਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖੋ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰੂ

जिन्ना चिर यह परिपूर्ण परमात्मा अकाल पुरख के चरणों नाल जुड़िया मेरा खालसा यह मेरा ही रूप है। पर जदों यह भरमां विच वहमां विच पै गया गुगे जठेरे मनन लग पिया मड़ी मसाणी मनन लग पिया इहदे मन विच द्वेष आ गई इनू ए पता लग गया।

ये चार कुरैतां छड़ देन ते पांच ककारा विच पक्के हो जान रैत रखन वंड के छकन सरबत दा भला।

0: DM Music पेश कर देने शब्द गुरबाणी गुरु रामदास राखो सरनाई
1: गुरु रामदास राखो सरनाई
0: भाई किशन पाल सिंह जी दी रस्पी।

परम सत्कारयोग सत्संग जीओ, आओ हुण आपां भाई जसवीर सिंह जी पौंटा साहिब वाले पास्यों शब्द कीर्तन सरवण करिए। शब्द भगत कबीर साहब जी का उच्चारण किया होया जो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज उपदेश कर रहे हैं। मन ना डिगे तन काहे को डराए, मन नू डराने दी की लोड़ है। मन ना डिगे तन काहे को डराए, चरण कमल चित

सानू वस्तु मिल जाए फिर साझा बैठ गया सब नाम को कीता सब कीर्तन कीता से सुनिया सुधरा हो जाएगा। करो अरदास जिन्हें धरती में पुटी है उन्हू पानी जरूर मिले, जिन्हें धरती में पुटी है उन्हू पानी मिले, जिन्हें खोजिए है उन्हू मार्ग मिल पाए। जिस सिख ने मन जोड़ के अरदास की है अरदासा मेरा धन गुरु नानक पहले सेवक बोलेगा पीछे प्यार नाल सारे बोलोगे।

देव बुझाई। मैंने एक सोची पाओ ओ केड़ी सबना जिया का एक दाता सो मैं दाता एक है। मैं उस दाते ना क्या ओदिया दातों पाके तन दौलत पुत्र धीया कारोबार प्राप्त करके उस दाते ना दाते पाके ओदिया दाता प्राप्त करके जरा भुल जाता है। अरुण फरमाउदन जेवन आप तेवन तेरी दात दिन दिन करके कीती रात खत्म विसारे ते होता समझा। तो सिख लिए आरजू है तमन्ना है केरी बुरा एक दे बुझाई सपना जिया का एक दाता सो मैं। तो आओ करो उस मालिक दे सोने दर्शन नाम द्वारा करो सारे मुखड़े पवित्र प्यार नाल गिर जपो सतनाम। गुरमुख की अवस्था जेदा गुरु नाल प्यार है वह गुरु ने बंदे नाल भी प्यार है। भगत नामदेव जी घ्यो वाला भांडा चुके मगर तुर पे ओ मेरे भगवान रूखड़ी ना खाइयो अपना बाटा लेके जाइयो कल उलंबे देगा आप चोपड़िया खांदा मेनू रुखी दे। दुनिया हैरान है भगत नामदेव रुखी हो गया नामदेव पागल हो कुत्ते ने मगर भजा आखिरकार कुत्ता खो अगर जी पहुंचे नमस्कार की मथा टेकिया जो सिर चुकिया की बकिया भगवान ही खड़ोते सनातन श्री वाहे उसके अंदर भी साइन पर पहला अपने अंदर भगवान जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजे सो जो पावे पांडे भी चुनस्त सारी जी अंदर बुराई है तो अभी बुरा करा जी अंदर चंगियाई है तो चंगियाई दुनिया में तो यह गुरमुख की अवस्था है। दुखिए वेख के हेल्पर बन जाए सुखिए वेख के वाहगुरु का शुक्र पुछिया मरदाने उदी उदास क्यों हो मरदाने ने सारी विथ्या मालिक ने दात दिखती है कोई लैण वाला नहीं मिलता ये किसी को दिखाने की मरदाने ने क्या दिखाई है जेनू अरैन हलवाई इन्हें क्या नहीं ए वस्तु अरैणा से हलवाइया के लैण वाली नहीं। अच्छा इन्हें कौन लवेगा इन्हें क्या फलां बाजार में चले जाओ उसे बड़ी सुंदर सजी हुई दुकान दुकान के अंदर शीशे के चौकड़िया के अंदर योजना में लाल लाल गीड़िया कई पैया तकिया हैं मेनू आस है कि वो एदा मुल पाए। अच्छा उस दुकान का मालिक कौन है इन्हें क्या सारसराय जौहरी सच मरदाना पुछदा पुछांदा सारसराय जौहरी की दुकान अज पहुंच मरदाना जिसे ने दुकान से चढ़िया बड़ी सजी की दुकान सी कबीर बिछे हैं अतरा दिया सजबूआ अंदर आ रही एक पासे चेर लगे हैं कुर्सियां लगिया मरदाना जिसले पहुंचया तो सारसराय ने तकिया कोई आया उठया बड़े अदब नाल हाथ जोड़ के किया आओ जी आया बैठ सोनी कुर्सी के मरदाने में बिठाया मरदाने ने सुख का सा लिया कह लगा मना लेना देना तो एक पासे रहा पर मना बोलिया बड़ा मिठा है खुश जी है मिठा बोलना भी जानते हैं मिठा बोलना भी इंसानियत है इंसान का कर्म है मिठा बोलना और तो भावे कोई बोले चाहे ना बोले पर भाई धन गुरु नानक का सिख कदे ना कौना बोले प्यारे तुहाडा गुरु इतना मिठा है जे सैर वर्गे रिखे ने दर्शन कर ले वह भी अमृत हो गया उस वेले नहीं अज भी अमृत अज भी वह अमृत है अज भी मिठा है गुरु तुहाडे दा मिठा जिस गुरु के दर्शन कर रहे हो बाणी पढ़ते हो कीर्तन सुन रहे हो मन के अंदर मिठा नफरत का जीवन सब तो घटिया जी नुक्ता जीवी का जीवन संपूर्ण नहीं नुक्ता जीवी क्यों करिए भाई ये करनी एक बाबा जी पास
संगत आई, बाबा जी कह लगे निंदा न करे करो पर। बाबा नंद सिंह जी महाराज जिन्होंने महापुरुषा ने श्री गुरु साहब को साक्षात गुरनाम जान के पूछे, असी तो रोज पढ़ देने ना प्रगुर गुरां की से, बाबा जी ने मने जिन्होंने मने उन्होंने वास्ते साक्षात। बाबा जी कह लगे निंदा न करे करो भाई। एक प्रेमी उठ के खड़ा हो गया, बाबा जी असी कलयुगी जीव हां, असी तो निंदा भी करते हैं उपज भी करते। बाबा जी कह लगे क्यों? इन्हें क्या महाराज असि स्वार्थी बंदे हैं, जिथों साडा मतलब हल हो जाए, स्वार्थ पूरा हो जाए, उनकी परिवार के कोल बंदे ये बड़ा उपकारी है, बड़ा दानी है, बड़ा महापुरुष है, अंदर का मन भावे जानता हो दूस करैक्टर, एदा करैक्टर चंगा नहीं पर इस वास्ते चंगा कह लग जाने हैं साडा मतलब पूरा हो। दूजे पासे असी उत्ते चिकड़ सुटन लग जाने, बुरा कह लग जाने, जेदे को साडा मतलब पूरा ना, अंदर का मन जानता हो ये नेक इंसान, ए कोई गलती नहीं पर इस वास्ते क्योंकि साडा मतलब हल नहीं होया इस वास्ते निंदा कर, क्योंकि दुनिया दो रंगी है, दुनिया दो रंग। हजूर एक दिन लेटे हुए सन, सराहने बाह की हुई मरदाने नाल मिठे मिठे वचन पे करते सन, और जिमीदारा दिया लड़कियां कामिया रोटी देने वास्ते जा रही सन। एक ने कहा दूजी नी भैने वेख घर बार छड़िया है, साल बनिया है, ते अजे भी सराहने पाल लगे। हजूर ने अपने सराहने बाह की हुई, जिसे ने बीबी ने वचन किया तो सरदुरा ने वो जी सह सी अडोल कद। तुझी कह लगी वेख नी भैने तेरी गल का कितना गुस्सा किया है। अजूर मुस्कुरा पे कह लगे वो मरदाने दुनिया किसे पास नहीं छ, आखो सही भाई किसी पर दुनिया। बाबा जी कह रहे सन मकान भी नहीं एक होती है पर दुनिया दिया दो नहीं, आखो से दो नहीं, जे चिटे कपड़े पा लो ये तो बड़ी आकड़ होगी, जे मेरे पा लो कहते भुखा मरन लग गए हैं, दो नहीं जो दो नहीं। तो प्यारी साध संगत उस प्रेमी ने किया बाबा जी जिन्हे को मतलब हल हो जाए ओदिया तरीफा, जिन्हे को सवाल पूरा ना आवे चंगी विदा कर, साडा तो सुभाव बने। आवानंद जी महाराज कह लगे चंगा फिर उस्तुत भी करया करो ते निंदा भी करया करो। बाबा जी एक ही बचन उस्तुत भी करिए निंदा, बाबा जी कह लगे तुहाडा सुभाव बन गया है ना करया कर। सारी संगत हैरान होगी, आज कोई सोच नहीं पाओ। बाबा जी कह लगे ये तुहाडा सुभाव बन गया उस्तुत निंदा करना, जे निंदा करनी है तो अपनी करो, सुभाव बने जे निंदा करनी है अपनी करो, सब अवगुण में गुरु ये गुरमुख लिखा। कबीर जी गुरमुख सन, कहते कबीर हम सबसे बुरे, असि बुरे होके चंगे बन की कोशिश कर, पर चंगे बन का यह सब तो पहला निशाना है, जिन्हें डालियां फल लगते हैं वो चुकी हैं। कबीर जी ने कहा कबीर हम सबसे बुरे, हम तक भरो सब कोए, जिन ऐसा कर हो दिया मीत हमारा। बाबा जी कहने लगे अपनी निंदा करे कर, अपने कर्मों की निंदा करे कर, जी उस्तुत करनी है तो मेरे धन गुरु नानक जी साहब भी उस्तुत करें करवाए करें पढ़िए ना उस्तुत कर कर जियो।

सुतन का रखा उत्सुक कर कर जीवा नानक नाम महारस मीठा अनदिन मन पुस्तक करया करो भाई गुरु जी पुस्तक मन में कर निरंकार कर मन मेरे सत व्यवहार निर्मल रचना अमृत पियो सदा सुहेला पुस्तक गुरु चंगा कर दिता है ना ओदे विच भी रह के धन गुरु नानक कहते वाहेगुरु ने पुत्र की दात दी है पुत्र नाल भी प्यार करो पर ओने नाल प्यार जरूर करो जिन्हें पुत्र बख्शे है आखिर जी एक गुरु बाबा जी कह लगे निंदा करनी है अपनी करो उस्तुत करनी है गुरु दी उस्तुत करो एक गुरुमुखता है एक गुरुमुख दी चाहिए तो प्यारे सात संगत यह वचन ना बोलिए जिदे नाल किसी का मन दुख जाए फरीद जी ने किया सब का मन माणिक ठाहण मूल मचंगवा जे तो प्रिया जी सिके तो न छी गुरु नानक दास सिंह जी का गुरु इतना मिठा हो सिख तो कदे भी तोड़ा न पड़े प्यार भरे बचन चंगे वचन करो भाई चंगयाई दुनिया में वंडनी सिख दी ड्यूटी ड्यूटी है आप जपो अमृत धाम।

आनंद गुणी जगीरा अनहद पाणी पूंजी संतन हथ राखी मरदाने के ये समूल वस्तु ना मुल बन इस वस्तु का मुल बन पर उन्होंने कीर्तन का पूरा नाम प्राप्त नहीं होता जिन्होंने कीर्तन रबी दास समझ के इसका आदर सत्कार किया है मरदानिया उन्होंने चोरियां मालिक पर मरदानिया यह की है महाराज एक सौ रुपये भी है अजू कह लगे आप करनी है मरदाने जा वापस दे महाराज हूं बना के मरदाने ने किया सदगुरु मसा मसा माया का मूह वेखे है तुम कहते हो वापस अजूर कह लगे मरदानिया आप किसे चुकी फिरांगे मरदाने ने कहा महाराज तुम थोड़ा चुकनी मरदाना आप ही चुकी फिरेगा इतने जाओगे दो बजे कीर्तन सुनावे हम थानू कदे नहीं खवागा महाराज भुख लगी अजूर कह लगे जी मरदानी अभी मालिक के हुक्म जिथे जावे मालिक आपे प्रबंध करेगा वापस दे पले चू न बंदे पंछी से दरवेश और जिन्होंने तकवा रब का तिना रिजिक गिरी गांठनी बांधते जवे देवता खाए गोविंद ताके पीछे गिरे मत भूखे ले जाए एक सौ रुपये की खैरी वापस दिखती सात राज अंदर और प्यार आया नौकर नु बुलाया धक्का कोई रबी दूर आया है और ये सौ सौ के मन धरे है प्रसादे का थाल परोसना है मिठाई भी रखना है दुधा दरबार भी भरना है कितना रुमाल पा के पूछा दे मैं दुकान बंद करके आऊंगा हाथ उस दादे के दर्शन करना चाहता अगर कब पहुंच गए सहवा दिन के पदार्था का थाल रखे मथा टेकया हजूर ने अमीर दृष्टि न सकिया सिर को

0: संगत रहो, जौ की भूसी खाओ।
1: जौ दी तोड़ी थोड़ा कम कटदा है, कट जे गरीबी कट ले, जौ दी तोड़ी खा के गुजारा कर ले, पर नाम जपण वालियां दी संगत ना छड़। कबीर साधु की संगत रहो, जौ

बहादुर सच्चे पातशाह जी बख्शिश कर रहे हैं, सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चहू दिस घेरै, विपत परी सब ही संग छाडत, को ना आवत नेरै, कार की नार बहुत हित जांस्यो, कार दी नार जिदे नाल तू किड़ी प्रीत पाई, कितना नेहो लगाया, जो कुछ भी कीता तू घर वाली नहीं कीता, पर ओ भी जदों प्राण पंखेरू तेरे अंदरों उड़ जानगे, ता फिर प्रेत प्रेत कर भजेगी तेरे तो दूर। उच्चारण करो श्री वाहेगुरु। आख्या ए बिद को व्यवहार बनयो है, इस संसार दा व्यवहार ही ऐसा है कि जदों प्राण पंखेरू उड़ जांदे हन तां ए शरीर मिट्टी हो जांदा है, फिर इसनू अग्न पेट कर दिता जांदा है, फिर इसनू कोई रख नहीं सकदा। ते भाई जिदे जिस शरीर लई तो अज तक सब कुछ कीता, जे वस्त्र पहने, खुराकां खादियां, चंगियां से जावां मानियां शरीर ले, हजूर कहंदे ने भाई तेरा तां कुछ भी नहीं है, ना तेरा परिवार है, ना तेरा अपना शरीर है, इसलिए तेरे नाल तां बिना सिमरन तो और कोई वस्तु जान वाली नहीं।

दुख दारू सुख रोग भया जा सुख ताम ना होई। तू करता करना मैं नाही जाऊ करी ना होई। बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाई लख्या रहा। जात में जोत, जोत में जाता अकल कला भरपूर। तू सच्चा साहे

अर्जन केवड भाग वडेरे जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास हर हर नाम मिले तृप्ता सह मिल संगत गुण प्रगाश जिन हर हर हर रस नाम न पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नी आए त्रिग जीवै त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर

से जन युग में सुखवासी से मुकत भय जिन हर ध्याया जी तिन टूटी जम की फांसी जिन हर निर्भो ध्याया जी तिन का भौ सब गुवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर ध्याया जी जन नानक तिन बल जासी।

एक पढ़े वो सिमरत शाशत जी कर क्रिया खट कर्म करंता छे भगत भले जन नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरम

कवियो बाज बेनती चौपई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष सबै तुम घावो आप हाथ दे मोय बचाओ सुखी बसे मोरो परवारा सेवक शिक सबै।

परमेश्वर नु भी कई नाम देते और तीरा तू फंगा नु भी पीर गया। साहब जी कहंदे ने तीर भी तू ही है, सैती भी तू ही है, तू ही तबर है, तू ही तरवार है, के तू ही तीर है, तू ही बरछी है, तू ही तबर है, तू ही

युद्ध करदियां शहीद होया तां सतगुरु जी ने उस वेले ओ नजारा थक के संकोशा दी वड्याई कीती कि किस तरह उन्हें अनेका दुश्मन

गुरु नु प्यार करने वाले अपने हथियार लेके अपने शस्त्र लेके आनंदपुर साहब नु चल पे। माझे ते माल

एक परमेश्वर की आराधना करो तो फिर देखो तुहाडी किस तरह जित होवेगी। ते कहंदे ने एही उपदेश साहिबां ने सारिआं

और सुधार हरी सिंह नलवार, सोने दाड़े चमकदे चेहरे शस्त्रां नाल सजे हुए सिंह घोड़ियां ते सवार जद इन अफगाना

इसे बन के अपाई परमेश्वर ने जो दिता है साबत सूरत उसनों कायम रखो। इंसान सारी उम्र वाल कटता है पर वो फिर भी आंदे जांदे ने, क्यों कि जो कुछ देना

विरला जाने। ये पंक्ति जिस सारे शब्द का केंद्रीय भाव है, भगत जी दसते हैं कि जो मनुख अपने आप नूं गुरु के हवाले करके नाम सिमरदा है, प्रभु वाली

मेरे मन विच तांग होवे के मैं जाके तेरे दर्शन करा। गुरु अमरदास सच्चे पातशाह, गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह दी जिन्होंने 12 साल सेवा की थी। 72 साल दी उम्र विच

उल्टी प्यारी टुरना किते गुरु सच्चे पातशाह वल मेरी पिठ ना हो जा। सात संगत बोलो श्री टुरदे हो पिछली प्यारी अदा।

ते सेवा संभालता दान खालसा जिन बख्शा इन माणियां दे माण ताणियां दे ताण न्योटियां दी ओट धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जीआ आप जी दे पावन पवित्र स्थान सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु।

0: abbastanza.
1: परम सरकारी अनुसार सारे आओ सारे प्यार नाल पहला वाहेगुरु शब्द का उच्चारण करिए, जुड़िए गुरु नानक के चरणों में। आप वड्डियां भागां वाले हो जो अमृत वेले तो इस वेले तक सतगुरां की पावन पवित्र गोद में बह के आ रस मान रहे हो, ये वड्डियां भागां करके नसीब हुंदा है। सो हुक्म होया कि पहले वाहेगुरु शब्द का उच्चारण करवाओ। सो सेवक की आवाज जिथों तक पुज रही है सारे प्यार नाल जपो, कोई भी रसना नाम जपन तो वांझी ना रह जाए।

ऐसी कृपा मुहे करो। एक साखी है, सुकेत मंडी दा राजा आया, कह लगा दसम पातशाह धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी नो मेरे ते कृपा करो। सामने एक सिख सी जो घोड़िया की लिद हटा के तबेले चो निकलिया सी। वो कवि भी सी, 52 कविया विचों। महाराज कहन लगे राजे नू तेनू ओदे वर्गा बना दिए। राजा कंबिया, कहन लगा महाराज तुसी कृपा करन लगे हो कि कहर करन लगे हो? महाराज ने धन्ना सिंह नू आवाज मारी, भाई धन्ना सिंह जी दर्शन दियो, आओ मेरे कोल। आ गए। कहन लगे भाई धन्ना सिंह जी कुछ मंग लो। धन्ना सिंह कहन लगा तुसी कृपा दे सागर हो, अगे कृपा कीती होर कृपा करो। महाराज कहन लगे तेनू इस राजे वर्गा बना दिए। वो भी कहन लगे तुसी कृपा करन लगे हो कि कहर करन लगे हो? इदे वर्ग। महाराज कह लगे राजन तू ए वर्गा नहीं बनना चाहता, ये तेरे वर्गा नहीं बनना चाहता, है दोनों कहते भी कृपा कर। असल दात ओदा नाम है, ये ओनू दिंदा जिसे ते कृपा कर दे। इस शब्द विच भी ये मंग मंगी है, ऐसी कृपा मोहे करो, तेरे बख्शियां चरण होण ते मेरा मथा लग जाए, सात संगत दी चरण धूड़ प्राप्त होए, ऐसी मंग